0: And they mentioned about their
1: No, I
0: demands
1: will
0: being
1: not
0: ignored.
1: highlight. I will not highlight. I will speak to the people and the press at that time.
2: तीन को जो लोग उधर चला गए वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से। अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है, एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है। उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जाएगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है।
3: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाय वन गेट वन फ्री।
4: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड दे आर वीडेड आउट। वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, मुशरफ हुसैन हैज बीन मेड प्रेसिडेंट ऑफ द माइनॉरिटी सेल, एंड द मेन थिंग इज दिस मीटिंग कंडेम द अट्रोसिटीज ऑन द तृणमूल वर्कर्स।
5: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए। तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है। जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
6: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
7: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।
8: फाइव आवर्स टू गो फॉर ऑल ऑफ डीकेएसएस ड्रीम्स टू कम ट्रू। आई एम गोना ट्राई एंड गेट मोर इनटू द क्राउड्स। हियर इज द पिक्चर सिद्धरमैया। NDTV stands completely engaged with Karnataka.
9: Higher ed, check the audio.
8: Let's do it.
10: Breaking story, we're jumping straight into it.
8: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
11: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
12: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
13: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude,
14: we're standing on the Indian Navy's newest warship.
12: The line of control, Shivaroor, NDTV.

0: आप सबने मेरा एक क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा।
1: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
2: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट, एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक।
1: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
3: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल ने डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं, और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
1: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
4: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter, while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and is also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km per hour, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: ये मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा।
1: Well, with us having to take a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: मिट्टी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया।

0: But the larger point over here is that this exposes the cracks within the India alliance. Walk us through the details. What exactly is happening within the alliance?
1: Well, Reet, that is the big question, because you see, just a few days back, we covered this entire India bloc meeting in which, in fact, there were many members of the India bloc who raised this issue that the opposition parties within the India
0: Now, it seems as though we're having trouble connecting with my colleague Teshri there, but of course, she's also raised a very important question, which is with regards to the future of the India bloc. Remember that with such controversies erupting between parties that, in fact, are a part of the same alliance, now the CPIM in the latest has even questioned that what happens to the fight against the BJP and the RSS. So, of course, big questions now remaining about the future of the India alliance and what happens when such big cracks emerge within the parties that are a part of the alliance. Let's move on to more updates coming in at this hour. Well, let's shift focus to Tamil Nadu. Now, women's safety debate has reignited in Tamil Nadu. The DMK chief, M.K. Stalin, has slammed Tamil Nadu Chief Minister Vijay for the TVK worker being accused for harassing a woman. Stalin even questioned Vijay's poll promises on women's safety. The DMK claimed that women are unsafe under Vijay Sarkar. The political heat on the Chief Minister Vijay comes after Tamil Nadu cops have registered a case against a TVK functionary for harassing a woman.
2: திருவைகுண்டத்தில் ஆளுங்கட்சி சார்ந்த பெண்ணுக்கு அந்த கட்சியில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை பற்றி ரெண்டு அமைச்சர்கிட்ட முறையிட்டும் நீதி கிடைக்கல. நேற்று கூட ஆலந்தூர்லேயும் சேலத்துலேயும் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த நபர்களை பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாக செய்திகள் வந்துச்சு. தேர்தலுக்கு முன்ன இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் பேசின எல்லா கூட்டத்திலையும் பெண்கள் பாதுகாப்பு பற்றி தான் தொடர்ந்து பேசினார். இன்னொன்று சொன்னார், எங்கே நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் அது நம்ம பசங்க தான் செஞ்சதாக இருக்கணும்னு சொன்னார். ஆனால் இன்றைய நிலை என்ன? தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான பெரும்பாலான குற்ற செயல்களில் தாவயக்கார நிர்வாகிகள் தான் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு. பிரச்சாரத்தில் பேசும்போது தாவேக்காட்சி பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ தாவேக்கா கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பு வேணும்னு மக்கள் கேட்குற நிலைக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து
3: இந்த நைட்ஸ் விமன் ஆர் அஜிடேட்டிங் இன் தி ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் பவர். தே டிட் நாட் டேக் எனி ஆக்ஷன் டு ரெஸ்டோர் பவர் ஆர் டேக் டு செட் ரைட் திங்ஸ். பட் தே வாண்ட் டு அக்யூஸ் டிஎம்கே ஃபார் வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங். திஸ் இஸ் டிஎம்கே டூயிங், திஸ் இஸ் டிஎம்டே கே, தட் இஸ் நாட் வை தென் வை யூ லீவ் தி கவர்மெண்ட், வி வில் டேக் கேர். But they did not take any action to restore power or see ensure that power supply is regular, but they want to accuse DMK. That is what they are doing.
0: Well, moving on to more updates coming in at this hour, an Indian Air Force AN-32 transport aircraft crashed and caught fire at the Air Force station in Assam's Jorhat yesterday morning. 5 IAF personnel, including 2 Agnivirs, were martyred in the crash. According to initial reports, the AN-32 aircraft went down within the Air Force station premises while landing, triggering a fire after the crash. The Indian Air Force has confirmed that the accident occurred during a training sortie and constituted an inquiry committee to ascertain the cause of the accident. Emergency response teams were immediately deployed to the site to control the blaze and even assess the situation. Union Defence Minister Rajnath Singh has expressed grief at the loss of India's air warriors. Moving on to fresh updates coming in, well, the fallout from the viral comedy controversy continues to widen, with apologies, disciplinary action and even public scrutiny mounting on all public fronts. Comedian Pranit More has now issued a second apology, admitting that he got carried away, calling the episode a lapse in judgment and saying that he takes full responsibility for what transpired. Meanwhile, the KIIM Hospital has initiated action against MBBS student Sejal Pawar, sending her on a 15-day leave, barring her entry to the college and even ordering a preliminary inquiry into the matter. The third key figure in the controversy, Himanshu Jhangra, has also issued a fresh statement, claiming that he used wrong words and even asserted that the viral story he narrated was not true, but had been improvised during the show.
4: आप सब ने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा.
5: अब मैंने जो वहाँ पे स्टोरी बताई, अब सर उसमें जो जिस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था ऐसे, मतलब कि हमारी अच्छी काफ़ी बात हुई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी हमने अच्छा काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बट सर जो मैंने वहाँ पे बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था, मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर. बिकॉज क्योंकि सर मेरे से पहले जो लोग बता रहे थे वीडियो में, उन्होंने भी काफ़ी ऐसी टाइप की स्टोरीज बताई हैं, वो अब पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि लोगों ने मेरे को ही ट्रिगर किया मोस्टली. मैं मानता भी हूँ क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे, मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा. मेरे को बहुत पछतावा है कि जो भी मैंने बोला वहाँ पे बहुत गलत बोला, और आगे से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे.
6: सेजल ओवर, इन्होंने 4 बार ये गलती की है हॉस्पिटल को, कुछ गलत गलत वर्ड चिंदीगढ़ टॉक्सिन ऐसे वर्ड उन्होंने यूज किए, लेकिन मुझे लगता है अभी जो हो रहा है उसके ऊपर बहुत ट्रोलिंग हो रहा है. हमें भी गुस्सा है कि ये बात उन्होंने जो डेड बॉडी के बारे में बात की वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर बन के बाहर आने वाली है और डॉक्टर के मन में कुछ डेड बॉडी का ये मेल हो या फीमेल हो प्राइवेट पार्ट के बारे में, या जब भी हम डेड बॉडी का टीचिंग के लिए यूज करते तो ऐसे जोक करना ये गलत बात है, लेकिन उसका एजुकेशन टूटना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सबक तो मिलनी चाहिए.
0: Let's now take you through more updates coming in Addis Ababa, where Prime Minister Modi has arrived in Nice, France, as part of his two-nation visit to amplify his Europe outreach. In the first leg of the visit, the Prime Minister will hold a bilateral meeting with French President Emmanuel Macron and also inaugurate Bharat Innovates alongside the French President. White House has also confirmed that US President Donald Trump will hold a meeting with the Indian Prime Minister Narendra Modi on the sidelines of the G7 summit. My colleague Aditya Raj Kaul brings us more details on this. Let's listen in to what he has to share.
7: Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France, and received a rousing welcome from the Indian diaspora. This comes just months after President Macron was in India and participated in the AI Impact Summit. India and France have grown bilateral relationship into a strategic partnership that has, you know, moved from not only defense and trade, but there is innovation at a very strong part of the relationship. And that's what there will be Bharat Innovates event that will be inaugurated jointly by Prime Minister Narendra Modi and President Macron today, Sunday, in Nice, France. Apart from Prime Minister, there will be India's Industry Minister Piyush Goyal, External Affairs Minister Jaishankar, and Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood also participating in this event. This is about innovation from semiconductors to technology and the latest disruptions in tech that are happening. And apart from that, there will be a lunch hosted by President Macron in honor of Prime Minister Modi. And thereafter, there will be a bilateral between India and France. Soon after, Prime Minister Modi will be leaving for Slovakia via Vienna in Austria. And this will be the first visit of any Prime Minister from India to Slovakia in the last 33 years. And apart from that, Slovakia and India are moving to have collaboration in defense, in technology, and in trade and other facets of the people-to-people contact, a lot of Indians

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दिस इज वेयर द फ्यूचर शोज अप फर्स्ट। कॉन्वर्सेशंस विद द बिगेस्ट नेम्स इन टेक एंड एआई। Putting tech through its paces. No fancy jargon or spec

0: flames in Bhopal, and that has brought to light the negligence that's killed a 3-year-old cancer patient. The patient was in fact injected with what should have been a medicine, was instead injected by a toxic substance called formalin that killed the child. Now this was something that the staff had mistakenly done. The FIR has now been registered against those two nursing officials for their negligence. Prime Minister Modi is in France and set to meet with Macron, and they both will be also inaugurating the Innovative Summit. The two leaders will also be holding bilateral talks on defence and technology. And a big claim being made by Donald Trump, saying the long-awaited deal to end the war in the Middle East is set to be signed, and that is going to be taking place today itself. He is saying the Strait of Hormuz will reopen instantly right after Iran signs on that dotted line. Let's begin with the break news coming in, and that is in regard to communal clash that's erupted. Breaking news coming out of Dehradun. There has been a violent communal clash that's broken out, and that has taken place over the dispute of water. The altercation escalated when the members of one community attacked a family with sharp edge weapons and hammers, and that has led to the death of one person. This is Vinod Kumar, who has been attacked. The violence, as far as that has taken place, the house has been set on fire, bulldozed, with Hindu groups there staging a road blockade as well. So we're talking about this is really CCTV footage there showing the bloody attack and the outrage after this youth Vinod Kumar was killed, and the violence as far as the accused house has now been set on fire, and we also have a bulldozer that's been used. They have bulldozed that very house. Let's get you some of the reactions coming in.
1: ये दो पक्षों में आज देश आए जो है पानी के खेत में पानी के चलाने को लेकर विवाद हुआ है, और इसमें जो एक व्यक्ति की हत्या हो गई और 3 व्यक्ति घायल हैं जो हॉस्पिटल में हैं, और इसमें दोनों पक्ष जो है अलग अलग समुदाय के हैं. तो इसमें अभी तक जो है हम अपनी पूरी टीम सारा फोर्स हमने मौके की गंभीरता को देखते हुए बुला लिया है. शीघ्र ही इस पर जो है हमारी टीमें निकल चुकी है और गिरफ्तारी की कार्रवाई हम कर रहे हैं. अभी हमारी स्थिति नियंत्रण में है. अतिरिक्त पुलिस बल भी हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं. टीम बना दी गई है. इनके जहाँ जहाँ इनके रिश्तेदार हैं, इनके जो जो स्थान पुलिस को पता चलते जा रहे हैं, उन्हीं पे टीम जा रही है और गिरफ्तारी की जा रही है.
2: सर, क्या आरोपी पक्ष मुस्लिम है?
1: आरोपी पक्ष हाँ मुस्लिम है.
3: भी बहुत ही दुखद घटना हुई, और यहाँ पे हमारे भगवत जी हैं, उनका बहुत हमारे वरिष्ठ और बुजुर्गवार कार्यकर्ता, उनके बेटे को, और बहुत वो भी हमारे बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारी भी था, और यहाँ पे कुछ ये गुंडा एलिमेंट जो नशे का कारोबार, चोरी का कारोबार, सब तरीके के धंधे करते हैं, कोई ये क्या है एहसान वगैरह बताते हैं कौन से परिवारों के ये, और इन्होंने लेकर के और पूरा परिवार उनके घर में घुस करके टूट पड़े. आप देख रहे हैं उनके घर के सामने ये यहाँ पर किस तरीके से खून बिखरा पड़ा है, और हथौड़ों से लेकर के उनके ऊपर वार किया और एक की हत्या कर दी, और दो तीन लोग और गंभीर रूप से घायल है. ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय है.
0: Right, let's just get in my colleague who is joining us is Kishore Rawat from that incident spot in Dehradun. Well, this man has been killed, Kishore. His family also came under attack. His family members are undergoing treatment. Take us through the details of what really happened, because the crux of all of this is a water dispute that led to the altercation. What are the details?
4: उसके घर पर प्रशासन का एक्शन हुआ है. बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है. आप ठीक मेरे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरे घर को यहाँ पर घर के जो अलग अलग हिस्से का उसको गिराया गया है, और फिलहाल अभी यहाँ पे भारी संख्या में लोग हैं. लोगों में काफी गुस्सा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पानी के खेत में पानी के लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई. करीबन 20 से 25 युवक आए और जो मृत थे उस पर हमला किया उसके घर में आके, और तस्वीरों में सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वो बेरहमी से उसका कत्ल किया गया. और उसको लेकर पूरे क्षेत्र में काफी गुस्सा है, तनावपूर्ण है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद है और फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई है। पुलिस बड़ी तादाद में है और लोगों की अगर बात करें तो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों का एक ही बात कहनी है कि इस तरह की जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तनाव को देख के, लोगों के गुस्से के रिएक्शन को देखकर यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासन एक्शन में आया है। ये बताया जा रहा है कि 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और अभी तलाश और जारी है और कौन कौन जो लोग शामिल थे इसमें उनकी सबकी तलाश जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो
2: लोग हैं वो भारी संख्या में मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ये एक बुलडोजर है, लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इस जो जहाँ पर जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनके जो यहाँ पर अवैध रूप से बताया जा रहा है कि उन्होंने घर बनाए या फिर अन्य चीज़ें को जो बनाया उनको अब यहाँ पर पकड़ा कार्रवाई की जा रही है। लगातार यही बात सामने आ रही है कि अब जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय विधायक है बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान, वो खुद यहाँ पर देर रात से है, वो लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश में है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो ताकि दूसरा इस तरह की हरकत ना करे। सिर्फ खेत में पानी को लगाने को लेकर अगर विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक युवक की जान चली जाती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मंशा होगी, किस तरीके से हथियारों के साथ वहां पहुंचे, लाठी डंडे, यहां तक कि बड़े बड़े हथौड़ों से हमला किया गया। तो अब ऐसे में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर, लेकिन पूरे क्षेत्र में माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है और लगातार कार्रवाई चल रही है, एक्शन लिया जा रहा है। जी
0: Right, thank you so much, Kishore, for getting us the very latest. Moving on now, let's get you more breaking news coming in. And this is coming out of West Bengal with this is Abhishek Banerjee, the nephew of Mamata Banerjee, who has reached the CID headquarters in the signature forgery case with a heat that is, in fact, on the leader of the TMC. He appears before the CID and is under legal scrutiny. Do remember that he was questioned for over 6 hours by the CID on Thursday, the 12th. And here we have, of course, he was called again because he hadn't been cooperating. We have Ritik, my colleague, joining us. Ritik, last time around the CID questioned him time and again. He do remember that he was summoned 3 times over. He had skipped those summons. Finally, he appeared before the CID. And this took place, just 3 days back. Now, of course, he has been called yet again. And the fact is that he wasn't really cooperating. From what we heard from our sources, is all he kept saying was, I do not know. I do not know. That is what was said from his side during that questioning that spanned over 6 hours.
5: Well, that's right. That lot of questions were asked with regard to the first signature, which were done for the appointment of Shobhanda Chattopadhyay as the leader of the opposition for the assembly. And during the first grilling, Abhishek Banerjee, the Trinamool Congress All India General Secretary, refuses to answer many of the questions. So far, the sources inside CID are concerned, we are being told. And we are also learning that today is the second day of Abhishek Banerjee's questioning. And he has just appeared before the probe team at the headquarters here in Bhabani Bhavan. And what we know, there would be multiple questions lined up for Abhishek Banerjee. One, that those signatures which were written or signed in capital letters, what was the reason behind that? And several, rebel TMC legislator have already registered that or raised this concern that they did not do the signature during the resolution meeting which had been taking place at Mamata Banerjee's residence in Kalighat. So these are the questions what the CBI probe team wants to precisely understand, to know and record the statement from Abhishek Banerjee.
0: Ritik, yes, of course, after 6 hours of grilling him, now we have another round of grilling by the CID. We will keep coming back to you for more on that. Same with news of West Bengal, it is the Mamata Banerjee team versus the rebels that's only growing further and further. Now, as per sources, 20 rebel MPs are likely to be holding a very key meeting that's going to be taking place here in the national capital. And, chairing that meeting, of course, had to be Suvindu Adhikari, the Chief Minister of West Bengal. But that plan has been cancelled. This meeting, it was very, very crucial and very vital because this is really coming about just before a meeting that's going to be taking place between the rebel MPs and the Lok Sabha Speaker, Om Birla, which is scheduled for tomorrow. And then we have Mamata Banerjee there also holding meetings.

0: We have arrived at Farm to Fuel, an award-winning initiative that is changing how farmers handle agricultural waste. The core challenge of crop residue isn't just processing it. It's collecting thousands of acres of loose straw in a tight 30-day window before the next planting season.
1: Sun is shining on us and so is this gentleman. Abhinder ji, bahut swagat hai aapka NDTV par. Farm to Fuel actually karta kya hai?
2: फार्म टू फ्यूल बेसिकली हम जो जितना भी एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ पेडी स्ट्रॉ हो या गन्ने के बाद जो भी खेत में रेजिड्यू रह गया, शुगर केन ट्रैश है, कॉटन स्टिक्स हैं, तो उसको कलेक्ट करके उसका एज अ फ्यूल उसको यूज़ करते हैं. वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो CBG यूज़ कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है या पैलेट प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, अल्टीमेटली तो उससे एनर्जी निकल रही है.
3: To achieve this, Farm to Fuel relies on heavy-duty German baler machines. A single machine can clear almost 70 acres of agricultural residue in just one day, compressing loose straw into compact, transportable bales. Last season alone, they cleared 26,000 acres, reducing an estimated 56,000 metric tons of carbon emissions.
1: Now, how did you convince farmers, or did you have to convince them, or if yes, how long did it take? What was their reaction like?
2: Initially, farmer, whatever he is doing, it has been the farming in Punjab, it's traditional. Mm-hmm. So if you have to bring the change, you have to give him some, for example, the other guys who operate balers, they charge farmer 1,000 rupees, 1,500, 2,000, whatsoever. So when I started, I said I won't charge any farmer, I'll do it for free. Mm-hmm. So when I incentivized it, they thought, okay, this guy is doing it for free. So it helped me reach masses. So I could reach the target of 26,000 acres.
0: For generations, farmers have been caught between a rock and a hard place. Clearing fields mechanically was highly expensive, leaving fire as the only viable option for small-scale landholders, despite the legal and environmental risks.
1: Since we're discussing farming and stubble burning, it's important to hear it straight from the horse's mouth. We have some farmers here. Sat Shri Akal ji, bahut bahut swagat hai tuhada is show de vich. Sab to pehla sawal ehi ki kyunki hun ta bahut sare solution hege ne parali nu leke, par us to pehla kis tarah diyan pareshaniyan tuhanu jarniyan pendiyan sigiyan jad parali handle karan di gal hundi?
4: Matlab parche kat dinde jadon parali nu ag launde sige, te baki janwaran di vi dith tutt ho jandi sige ohde naal.
1: ਅੱਛਾ ਜੀ,
4: ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ?
1: ਬਿਲਕੁਲ,
4: ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ.
1: ਫਾਰਮ ਟੂ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ?
4: ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਨੈਕਟ, ਤਾਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਣ ਫਰੀ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ.
1: So what they're essentially saying is that, you know, every time they had to manage stubble, it invited costs and of course several other risks, along with some, you know, complaints that police would file against them. So all of that gets sorted, all of that has one stop solution, which is Farm to Fuel in this case. What about pellets? Like how do you make them, and what really eventually happens?
2: Eventually electricity happens. But so जो आपने बेल्स देखी, उतनी बड़ी बेल्स को ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है. तो उसका एक सोल्यूशन निकाला कि उसको छोटे फॉर्म में, कम्यूटेबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ट्रक्स में भर के. तो ये जो पराली है, इसको पहले श्रेड करते हैं, श्रेड करके हैमर में डालते हैं, उसको डीसाइज करते हैं, डीसाइज करके फिर एक पैलेट मशीन होती है जिसके अंदर पराली जाती है, इसके छोटे छोटे पैलेट्स बन जाते हैं. तो वो पैलेट्स फिर ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो गए, उसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है. मतलब अगर आप वैसे देखोगे कि 10 टन पराली पड़ी है, उसका वॉल्यूम बहुत होगा,
1: लेकिन
2: हाँ वो डेंस हो जाएगा और पैलेट्स की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है. तो फिर थर्मल प्लांट फिर फर्दर उसको अपने कोल के साथ जला सकता है.
1: पैलेट्स आर नो लेस देन बुलेट्स,
2: इट्स एक्चुअली वो बुलेट्स के साइज का ही होता है.

0: like, Ritik was mentioning those 20 rebel MPs that are landing in the national capital one by one. They're going to be, having that very crucial meeting that's coming up with Bhupinder Yadav. Do remember, it was supposed to be in the presence of the Chief Minister, Suvindu Adhikari. But Suvindu Adhikari has not taken that flight to the national capital. He's not going to be making it here today. On the other side, we also have, another meeting that's taking place. And the meeting that's taking place is, with Mamata Banerjee holding meetings with her loyalists and her supporters. And this is an action that's been taken by Team Mamata. They have removed the rebel MPs from their party positions, while Team Mamata has alleged that there are MLAs that are being threatened. This really comes about after another TMC MLA has resigned from the party. Let's listen in.
1: Have you resigned recently? You have sent the resignation letter. We were hearing the news.
2: I sent my resignation to Chairperson Mamata Banerjee of AITC.
1: What was the reason of her resignation, if I could ask you, Mr. Bhunia?
2: I'm not going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
1: All right.
2: But you can take it for granted that I was not in the present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
1: You were unhappy with the present affairs, is what you're saying?
2: Yeah. Very, very unhappy. I was Pradesh Congress President earlier.
1: Right.
2: My Congress life was 52 years.
1: Mm-hmm.
2: So, you know that. After that, I joined my Congress. But present situation is not very compatible to work very freely. And the situation is very, very critical.
3: बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है उसी का अंश है वो तृणमूल के एमपी लोग को लालच भी दिखाया डर भी दिखाया जो लोग कमजोर है जिसको नीति नैतिकता के ठीक नहीं है वो लोग चले गए हैं मैं यही देखता हूँ कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो भारतीय लोकतंत्र का खिलाफ है वो कुछ सफल हुआ
4: डरे हुए हैं कुछ ने खाया हुआ है लोभ प्रलोभन भी हुआ है वो अभी उसके बारे में भी मालूम है कुछ एक लोग जेल भी गए थे उनके ऊपर भी चिटफंड के केस हैं तो वो लोग हैं जो मुंह दिखाई में मिलता है वो मिल गया और जो रिश्ता हुआ तो उसमें केस खत्म कर दिए गए बहुतों को जैसे दीदी ने कहा बहुतों को मारा गया धमकाया गया घर तोड़ दिए गए पहले फर्स्ट टाइम जो एमपीज थे इसमें 6 तो फर्स्ट टाइम है 4 को तो नष्ट कर दिया
5: बैठक ये हम नहीं जानते लेकिन जा रहे हैं ये लोग चांस लगा रहे हैं कि भाजपा में आएंगे लेकिन भाजपा का दरवाजा अभी बंद है तो वास्तव में अभी ये लोगों को नहीं लेगा
6: अभिषेक बनर्जी घर में दी गई सुबह
5: ऐसा ही होने वाला है जितने नेगेटिव वॉक हुआ उसके अगेंस्ट में तो ये ईडी होगा ही
7: ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो रेबल एमपीज हैं जो बागी नेता हैं जो लोकसभा के रेबल एमपीज हैं इनके ऊपर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आप एक चिन्ह के नीचे आप ये चुनाव जीत कर आए हैं ममता बनर्जी का चेहरा आपके पोस्टर्स में आप लगाए और आप ममता बनर्जी के पोस्टर्स के नीचे तृणमूल कांग्रेस चिन्ह के नीचे आप चुनाव जीत कर आए हैं अब जब पार्टी हार गई है आप वही पार्टी को छोड़ रहे हैं जिसके चिन्ह पर जिसके लीडर पर आप चुनाव जीत कर आए हैं तो ये मैं समझती हूँ कि नैतिकता का बहुत बड़ा अभाव है ये एक नैतिक कमजोरी है
0: Now the heat, of course, is mounting on Trinamool Congress leaders with multiple agencies stepping up their action. We're talking about Abhishek Banerjee, who's once again appeared before the CID in the signature forgery case. And that has taken place at the headquarters today. This is Mamata Banerjee's nephew who's facing the heat from both the ED, the Enforcement Directorate, and the CID in separate cases. We're talking about 3 cases in all, including the recruitment scam, the hate speech probe, and the Kolkata police has also conducted a pre-dawn search at Abhishek. अभिषेक अकाली।

0: residence while looking for one of his close aides. Mamata Banerjee also reached that spot later on, but it is, of course, a TMC MLA. Now, Madan Mitra also is under the scanner of the ED. The Enforcement Directorate raided 7 properties linked to the TMC MLA Madan Mitra in connection with the alleged municipal recruitment scam, with searches continuing for over 11 hours. Now, adding to the pressure, the CID has also summoned TMC MLA Kunal Ghosh in the signature case, signalling a widening investigation. While today, it is round 2 of questioning of the CID, questioning Abhishek Banerjee, grilling him literally after grilling him just 3 days back for 6 hours at a stretch.
1: दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर मदन के घर पे भी रेड हुआ है. अब वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ईडी के पास एक कंप्लेन है और उस कंप्लेन में उनके पास इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रमाण है तो वो इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे. अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. अगर मदनदा क्लीन है तो मदनदा को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. मदनदा इज अ वेरी टॉल लीडर और इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो देखा जाएगा. अगर मदनदा सही है तो कोर्ट में कोई प्रमाण नहीं होगा, वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे.
2: ये पुलिस जा रहा है और क्या बोले सीआईडी जा रहा है, तो जिसको घर सीआईडी सीबीआई और एनआईए ईडी ये सब जाना है तो जाएगा ही. तो वो लोग कुछ नहीं किया था, 15 साल के सरकार सबको डीडी भेजा, सीआईडी भेजा, राजीव कुमार का पुलिस भेजा, मनोज भरवा का पुलिस भेजा, विनीत गोयल का पुलिस भेजा. तो ये लोग तो ऐसा कुछ किए हैं, सबूत है, एविडेंस है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, तो लोग को घर में नहीं जाएगा, तो जाना चाहिए, इसीलिए जा रहे हैं.
0: Switching tracks now from West Bengal to Maharashtra, and there is this growing speculation over that alleged Operation Tiger by the Eknath Shinde-led Shiv Sena Uddhav Thackeray. This is a meeting, a very crucial meeting that's taking place at Mathushri. The meeting has been called amid reports claiming that the Shinde camp is attempting to woo 2 to 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in the parliament. Responding to the speculation is Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut, saying that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs has been called as a routine monthly review. However, sources are saying that it is UBT MP Sanjay Jadhav as well as Bhav Saheb Vaka Chore and Nagesh Patil Ashtikar who have informed the party leadership that they will not be attending the meeting that started at 12 o'clock in the afternoon. While the Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculation of the political realignment yet again in Maharashtra.
3: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी. जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे. तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं. जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे. आप देखो
4: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा. अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं. टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर. आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए. अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है. और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए.
5: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मंशा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है.
6: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टाइगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही.

0: स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
2: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
3: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
4: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
5: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
6: It's also important that how they are reshaping the industries.
7: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
2: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
8: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: Let's now take you through the top developments coming in at this hour. Well, Didi versus Rebels fight is now growing further.
10: Welcome back to the Made in Place Summit. There's a really lovely energy out here in the exhibition space. People are taking a break, looking at old photographs, playing simple games, and honestly, just letting themselves be a little innocent again. And that brings us beautifully to our final segment of the day, because behind all the big policies and scientific studies, there are people who bring the magic to life every morning. And today they are telling us why they do the work that they do.
11: तबस्सुम जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आप प्ले यानी कि खेल में हर रोज काम करते हैं, बच्चे आपके साथ बहुत समय बिताते हैं, जब आप आंगनवाड़ी में होते हैं उनके साथ आप घंटे समय बिताते हैं, चाहे उनकी हंसी हो, उनका रोना हो, उनकी खेल, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूँ आपके एक दिन के काम में आपके लिए एक सफल दिन क्या होगा?
12: मेरे पास हर तरीके का बच्चा आता है मेरी आंगनवाड़ियों में, मेरी साली जो साथ की हैं उनकी आंगनवाड़ियों में, तो मेरा यही उद्देश्य रहता है जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो हंसते हुए जाएं।
11: तब जी, आज हम सब बच्चे बन सकते हैं?
12: हाँ जी, मैं यही कह रही थी, जैसे आपने अपना नाम रखा है बचपन मनाओ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत देर से सभी बहुत मुझसे तो सभी काबिल हैं और मैं तो बहुत छोटी हूँ, आपके छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो सभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्रिएटिविटी की बातें कर रहे थे, रचनात्मक की बातें करते, ग्रुपिंग की बातें कर रहे थे। ये सब चीज़ें जब मैं सुन रही थी तो मैं कह रही थी ये तो मैं अपनी कक्षा में कराती हूँ, ग्रुपिंग करती हूँ, मैं ग्रुपिंग ऐसे करती हूँ जैसे मेरी क्लास में जो पुराने बच्चे हैं वो सीख चुके हैं, अब नए बच्चे आ रहे हैं वो उनका कंटेंट बीच में चल रहा है, मैं क्या करती हूँ एक होशियार बच्चा, एक थोड़ा सा नया बच्चा, एक मिडिल बच्चा, तीन बच्चों का ग्रुप इधर बना दिया, तीन का इधर बना दिया, तीन का। मैं उद्देश्य अपना माइंड में रखती हूँ कि ये एक्टिविटी कराने से मेरा ये विकास होगा, जो हम स्टोरी कराते हैं या कोई भी चीज कराते हैं।
11: मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, इसके पहले मैं एक्चुअली सुनीता जी से पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहे, किसी बच्चे की हो, किसी परिवार की हो, जिससे आपको लगा कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो वाकई में बहुत ज़रूरी काम है, जैसे अभी शेयर किया तबस्सुम ने हमारे साथ, आपको लगे हाँ जो मैं इन बच्चों के फेस पर खुशी ला रही हूँ, एक मुस्कान ला रही हूँ, ऐसी कुछ कहानी आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे?
13: मेरे यहाँ बच्चे छोटे छोटे आते हैं, 3 साल से ऊपर के, रोते हुए आते हैं, बच्चे अंदर भी नहीं घुसता है क्लास में, रोता है घर जाना है घर जाना है, हम उसे प्यार से बोलते हैं, गोदी में बिठाते हैं, खिलौना दिखाते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आपको पता है, और हम भी करते हैं, लेकिन हम उनको प्रेशर नहीं दे सकते, पढ़ा नहीं सकते, मार नहीं सकते, बच्चा अपने मन से जो करेगा हम वही कराएंगे,
11: बहुत जरूरी है कि प्रेशर नहीं
13: डालना, तभी तो बच्चा हमसे प्यार करेगा, हम भी बच्चे से प्यार करेंगे तभी तो बच्चा हमसे प्यार करेगा।
11: बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया सुनीता जी आपने। नानू जी, आई वांट टू कम टू हियर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेशन, व्हाई यू डू व्हाट यू डू, व्हाट वुड यू से, आपको क्यों लगता है कि किस तरह का बचपन हमें सही मायने में बचाना चाहिए?
14: बच्चा जब इस दुनिया में आता है, व्हेन चाइल्ड इज बॉर्न, बेसिकली द चाइल्ड इज अ हैप्पी चाइल्ड एंड एन एक्सप्लोरेटिव चाइल्ड, ही नीड्स टू नो मोर, ही हैज सो मेनी वेरिड काइंड्स ऑफ नीड्स, सो बेसिकली दैट नीड फुलफिलमेंट इज फर्स्ट

0: vision of the world. We believe in cooperation, in open research, in abiding by international law and the respect of independent nations. With that common vision, we can build that partnerships in terms of research and innovation. This is why that French-Indian Year of Innovation means so much, and this is why your presence here means a lot. Dear Prime Minister, thank you for your attention. Do you all have a good summit.
1: Ministers, I beg your pardon, the Prime Minister is set to speak now. The French president speaking over there at the Bharat Innovates Summit. Live images coming in from Nice in France. What is this all about? It's a gateway for Indian innovation. There are more than 120 Indian startups at Bharat Innovates in Nice. It's designed as an ongoing collaboration framework for global stakeholders. It's an opportunity to build sustained engagement with India's innovation ecosystem. What does that mean? It means investor-grade deal flows. It means fast-track partnership. It means co-development and research access as well. It means a problem-to-solution bridge. In other words, access to India's high-impact geographies for solutions to the toughest market challenges. It means global soft landing routes. Let's listen in to the Prime Minister.
2: VCs, industry leaders and innovators, bonjour, namaste. भारत इनोवेट्स में शामिल सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट मैक्रो अभी भारत यात्रा के दौरान आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत और फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दशा में एक कदम है। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। आईआईटी दिल्ली के बोर्ड के चेयरपर्सन मेरे मित्र हरीश सालवे जी ने इसके आयोजन में बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए मैं उन्हें और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, आपको यहां भारत के भविष्य की झलक दिखाई देती है, आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है, आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। यहां कोई एआई से गांवों का जीवन बदलने के लिए काम कर रहा है, कोई किसानों की मदद के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ युवा स्मार्ट सिटीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नए मटेरियल से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कोई ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी से एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित कर रहा है, और कुछ स्टार्टअप्स डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विद स्केल एंड स्पीड, भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट फॉर द होल वर्ल्ड। साथियों, आज बहुत सारे वीसीज और इंडस्ट्रियल लीडर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं उनके सामने विशेष तौर पर भारत से आए इन नौजवान साथियों की प्रशंसा करूंगा। यहां जितने भी साथी आए हैं, उन्होंने पुराने रास्ते पर चलने की बजाय उसको छोड़ करके उन्होंने एक नई जगह का रास्ता चुना है, एक नई लीक बनाई है। और यहां आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथियों, दुनिया के लिए ये डेकेड डिसरप्शन और डेवलपमेंट दोनों का है। संघर्षों और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्व एक अभूतपूर्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है।

टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, ये सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है। यहां मौजूद स्टार्टअप जगत के साथ आप सभी साथियों के लिए भी ये उतनी ही बड़ी प्रेरणा है। फ्रेंड्स, इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है। आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं। युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर

0: सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी। आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया। मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
1: All right, a very important speech by Prime Minister Narendra Modi there in Nice at the Bharat Innovates mission, as it were. It's a huge gathering of more than 120 Indian startups. The Prime Minister speaking about the future of startups, the future of international collaboration in startups, how India and France can work together, how Indian startups have a huge role in working for humanity, how India has moved from being an acceptor of technology to being one, a nation which provides technology and startups. And there are multiple areas where this is working, whether it's technology, whether it is defense, whether it is other areas. This was preceded, the Prime Minister's speech, by what the French President Emmanuel Macron had to say. There will be bilateral talks now between India and France, the first part of bilateral talks, which are expected to continue in Paris in a couple of days from now. Aditya?
2: That's right, Vishnu. A very important speech out there by Prime Minister Narendra Modi, focusing on how Bharat Innovates is a new milestone for India-France ties. And India is witnessing a massive revolution. Bharat Innovates, bridging India with global talent. And India is witnessing a massive boom when it comes to startups. So this is a very important and critical speech of Prime Minister Narendra Modi coming in on what we witnessed the inauguration of this entire summit. And Macron also focused on how India can be a hub of artificial intelligence and India-French cooperation in the energy sector. A lot more coming in on the other side. As Vishnu mentioned, there is a bilateral lined up and a lunch hosted by President Macron for Prime Minister Modi. We're heading for a short break. News and bulletins will continue on the other side.

0: यदि हम आपको पुरस्कृत करेंगे, मतलब वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं अपने ऐसे लोगों को जो उनको सूचना दे रहे हैं। तो ये जो एक बदलाव रहा, इससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। अब बात करते हैं हम प्रशासन की, तो डेफिनेटली प्रशासन की ओर से जो हमारा एक ऑर्डर जो रिलीज हुए और उसमें बहुत बड़ा योगदान था, जीआरसी नेटवर्क के थ्रू हाईकोर्ट में जो पीआईएल दाखिल किया गया कि इतने बाल विवाह की संभावना है, चाहे अक्षय तृतीया हो चाहे डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर हो, तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस पीआईएल पर गौर किया और इंस्ट्रक्शन जारी किए कि सरपंच और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो सीडब्ल्यूपीओ हो, इन सबको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से ऑन ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट डीएम तक भी जो ऑर्डर आने चाहिए, उस पर जितना संज्ञान काम होना चाहिए वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो डेफिनेटली जीआरसी ने ना केवल ट्रेनिंग्स और इनके माध्यम से लोगों को ओरिएंट किया, बल्कि लीगल कंप्लायंसेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो आज ये दोनों साथ मिलकर, हमारे एनजीओस भी, सिविल सोसाइटी के साथ साथ गवर्नमेंट स्टेक होल्डर भी, और साथ साथ हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में आकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए प्रयासरत हैं।
1: So I think what Dr. Pandya is trying to say there is also how important communication is at every level when it comes to an issue as serious as child marriage. Karminder ji, aapse bhi puchna chahungi, as CMPO, aap administration ka hissa hain, to aap tamam NGOs aur sansthanon ke saath milkar kaise kaam karte hain? We just heard communication itna bada role play karta hai in cheezon mein. कि वो आपको खबर आके दे और फिर आप एक्शन ले, प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे होता है?
2: जी कानून अकेले अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। और जो हमारी एनजीओज हैं, जिसमें जेआरसी और एमडीडी तो हैं ही, जो बहुत ज़्यादा कैंपेन मोड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे भारत ज्ञान विज्ञान समिति है, हिम्मत है रोहतक में, हरियाणा में, जो महिलाओं के बीच में काम करती हैं, तो वो जो लोग हैं एनजीओज के, वो हर रोज़ पब्लिक के बीच में होते हैं
1: जी।
2: और उनको वो अवेयरनेस का काम करना है, साथ में हम कोलैबोरेशन में ही काम करते हैं। हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम मिलके ही करते हैं, एक जगह पे जाते हैं और वहाँ मिलके विद बैनर्स हम लेते हैं, वहाँ पे अपने पैम्फलेट्स भी बांटते हैं लोगों को। और हरियाणा सरकार ने और महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरे हरियाणा में हर ज़िले में हमारे बड़े बड़े बैनर्स लगवाए हैं, होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिन पे हमारा नंबर डिस्प्ले है, हमारा नाम, नंबर, एड्रेस बाल विवाह के खिलाफ। तो इतने बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर लग गए, स्कूल्स के बाहर लग गए, पुलिस थानों के बाहर इस तरह के होर्डिंग्स लग गए, गाँव में जगह मंदिरों में हमने रिलीजियस प्लेसिस पे ये लगाए, और रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हमने मिल के काम किया। तो इसका फ़र्क ये पड़ा कि कहीं शादी हो रही होती है तो लोग रिपोर्ट करते हैं
1: जी।
2: एमडीडी का तो कैडर है ही, जो नीचे हैं लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा बोर्ड पढ़ के भी बहुत लोग इन्फॉर्म करते हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जब कोई देखता है तो 112 पे या हमारे नंबर पे या जस्ट राइट के नंबर पे, एमडीडी के नंबर पे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किए हुए हैं अपने अपने ज़िलों में ये, तो हमारे पास सूचनाएं आ जाती हैं, फिर हम मौके पे संबंधित थाने की पुलिस को लेके जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को हम समझाते हैं कि आप शादी करोगे तो उसके ये इम्पैक्ट होंगे, एफआईआर दर्ज होगी, जेल में जाओगे। साथ में हरियाणा सरकार ने 2020 में एक नियम लागू किया था कि जो नाबालिग की शादी है उसको कोई वैलिडिटी नहीं रही है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। तो हम उनको बताते हैं कि आप ये शादी करोगे तो इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई लीगल कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो नहीं मिल सकते हैं, लड़की के लीगल राइट्स हैं। और अगेन मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि मैंने तो खास तौर पे शादी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, कि शादी चलाने के लिए जितना कमिटमेंट, जितनी मैच्योरिटी चाहिए, वो एक बच्चे में नहीं हो सकती, और जब बच्चा शादी के लायक होगा तब तक उसके बच्चे हो चुके होंगे। तो ना तो बच्चे ढंग से बड़े हो पाएंगे, ना वो मदर ढंग से उन बच्चों की देखभाल कर पाएगी, उसके हेल्थ इम्पैक्ट अलग से हैं, लीगल इम्पैक्ट्स अलग से हैं। तो ये सारा मिलके हम लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त लोगों के बीच में कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ही कैंपेन मोड में ही हम लोग ये काम करते हैं।
1: यू आर वन ऑफ द फुट सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड एंड यू आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज टू यू मिस्टर रविकांत, एज वी मेंशन्ड अर्लियर इन द शो, देयर आर स्टिल सम स्टेट्स दैट शो अ राइज इन द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, दिल्ली, पंजाब, गोवा आर अमंग देम। Can we still say, is India moving towards the tipping point to end child marriage by the year 2030, sir?
3: 100% India will reach the tipping point at this decline, 3% decline, and there will be further decline.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: स्टेप इन टू एनडीटीवी लाइफलाइन योर ट्रस्टेड गाइड टू बेटर हेल्थ अक्रॉस एवरी स्क्रीन एंड एवरी फॉर्मेट योर वीकेंड डेस्टिनेशन फॉर एक्सपर्ट वॉइसेस वेलनेस हैक्स एंड एक्शनेबल एडवाइस द कन्वर्सेशंस दैट गो डीपर वेयर मिथ्स आर अनपैक्ड And health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories, and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it, and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.

0: Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी हाँ जरूर
3: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo two or to three Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
4: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते

0: कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
1: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे नौ सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
2: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
3: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा है उनको, जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
4: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
5: Shifting our focus, following Akhilesh Yadav's controversial allegations that crores in the Ram Temple donation funds were missing, the government is now monitoring the situation very closely. The state government has set up a special three-member probe team to investigate the matter. SP Chief Akhilesh Yadav earlier alleged that crores of funds from the donations were missing and the matter was extremely sensitive, demanding a court-monitored probe. The BJP has come out and clarified that Chief Minister Yogi Adityanath has set up the SIT upon the request of the temple trustees.
6: अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? इस सनातन धर्म का अपमान है।
7: उस पे हम बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में। एक, लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अयोध्या में उसको पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि देश माफ नहीं करने वाला।
8: ये बहुत गंभीर विषय है, ये सिर्फ चंदा चोरी का, यानी लोगों की आस्था चोरी का भी विषय है। और SIT क्या कर लेगी? इसके पहले दर्जनों SIT गठित हुई, उसमें क्या हुआ? ED CBI की जांच क्यों नहीं? ED CBI जांच सिर्फ विपक्ष के लिए है। इस प्रकरण में ED CBI की जाँच हो और अदालत की देख रेख में होनी चाहिए।
9: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में

0: गलत काम करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा हमारी एनडीए की सरकार देती है। इसमें भी एसआईटी का गठन हो गया है और इंतजार करिए, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, उन्होंने ये एसआईटी कमेटी का अनाउंसमेंट किया है, वो पूरी जांच हो जाएगी, उसमें जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
2: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
3: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, एसएसटी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
4: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
2: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead, Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
5: Duniya mein alag-alag desh ek dusre ke saath vyapar karte hain, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको सौ सवा सौ स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
6: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible, and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the Summit for AI.
5: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, ऐसे सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है. हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है.
6: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strengths of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
5: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
6: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
2: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.

0: with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for separate sitting in the Parliament and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी
3: सिंबल के लिए जाएंगे आप
2: हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo two or to three Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी पहले भाग जाएंगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो कभी ऑपरेशन लोटस कभी ऑपरेशन टाइगर आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है कोई नई बात थोड़ी है हर दल करता है हम भी कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं

0: हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
1: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे कि अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
2: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल
3: Shifting our focus, following Akhilesh Yadav's controversial allegations that crores in the Ram Temple donation funds were missing, the government is now monitoring the situation very closely. The state government has set up a special three-member probe team to investigate the matter. SP Chief Akhilesh Yadav earlier alleged that crores of funds from the donations were missing and the matter was extremely sensitive, demanding a court-monitored probe. The BJP has come out and clarified that Chief Minister Yogi Adityanath has set up the SIT upon the request of the temple trustees.
4: अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? के बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ले, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है।
5: उसमें हम बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में। एक, लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अयोध्या में उसको पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि देश माफ नहीं करने वाला।
6: ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें चंदा चोरी का यानी लोगों की आस्था चोरी का भी विषय है। और SIT क्या कर लेगी? इसके पहले दर्जनों SIT गठित हुई, उसमें क्या हुआ? ED CBI की जाँच क्यों नहीं? ED CBI जाँच सिर्फ विपक्ष के लिए है। इस प्रकरण में ED CBI की जाँच हो और अदालत के देखरेख में होनी चाहिए।
7: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गलत काम करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा हमारी NDA की सरकार देती है। इसमें भी SIT का गठन हो गया है और इंतजार करिए, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।
8: जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, उन्होंने ये SIT कमेटी का अनाउंसमेंट किया है, वो पूरी जांच हो जाएगी, उसमें जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
3: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against 2 nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked 2 nursing staff members for causing death by negligence.
9: एक जो F नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कहा, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कहा, SST मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी, मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के, मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी, सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत दरी एक्सपायर हो गया।
10: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
3: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
11: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
12: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
11: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, ऐसे सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
12: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here. but also because a few days ago, you've become the prime minister with the longest

0: from the United States government. Anthropic, however, says it disagrees with the decision. The company argues that the reported security flaw was limited. It also says its internal testing found no universal way to bypass the model's safeguards. More importantly, Anthropic warns such risks exist across AI models. And if every model is recalled over isolated vulnerabilities, it could slow innovation across the entire industry. The disagreement didn't begin this week. Anthropic and Trump administration have been locked in disputes over AI policy for months. And now, this latest order has pushed the confrontation into public view. So why should India care? Because India is Anthropic's second largest consumer market after the United States. Indian software developers depend on it on a daily basis. IT firms and AI startups also rely heavily on Claude for coding, research, and productivity. For India, the episode has strengthened calls for investing in indigenous AI research and homegrown foundation models. Because of access to frontier AI can disappear overnight due to another country's national security decisions, it raises an important question. How long can India continue to rely on foreign AI infrastructure? Bureau Report, NDTV World.
1: Shifting our focus following Akhilesh Yadav's controversial allegations that crores in the Ram Temple donation funds were missing, the government is now monitoring the situation very closely. The state government has set up a special three-member probe team to investigate the matter. SP Chief Akhilesh Yadav earlier alleged that crores of funds from the donations were missing and the matter was extremely sensitive, demanding a court-monitored probe. The BJP has come out and clarified that Chief Minister Yogi Adityanath has set up the SIT upon the request of the temple trustees.
2: अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा अधिकारियों बताओ हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए कि बताइए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ले और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों ये सनातन धर्म का अपमान है
3: उस पे हम बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में एक लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अयोध्या में उसको पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि देश माफ नहीं करने वाला
4: ये बहुत गंभीर विषय है ये सिर्फ चंदा चोरी का यानी लोगों की आस्था चोरी का भी विषय है और SIT क्या कर लेगी इसके पहले दर्जनों SIT गठित हुई उसमें क्या हुआ ED CBI की जांच क्यों नहीं ED CBI जांच सिर्फ विपक्ष के लिए है इस प्रकरण में ED CBI की जाँच हो और अदालत की देखरेख में होनी चाहिए
5: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गलत काम करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा हमारी NDA की सरकार देती है इसमें भी SIT का गठन हो गया है और इंतजार करिए जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी
6: जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है उन्होंने ये SIT कमेटी का अनाउंसमेंट किया है वो पूरी जांच हो जाएगी इसमें जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी

0: क्योंकि एक पार्टी चलता है ना, ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है, तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर,
1: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे, और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए है, इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं, शायद ये सही भी नहीं होते हैं, चाप है।
2: I mean, growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
3: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे, तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
4: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
5: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
6: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है, ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
7: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उबाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही, परंतु ज्यांना यायचं असेल त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
2: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal. A 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
8: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है इसमें एनेस्थिया भी है तो मैडम बोले लाई नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है ये फ्लैशर है मैंने कही मैडम ये फ्लैशर नहीं है ये बोन मेरो का सामान रखा है इसको मत छेड़ो आप दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने नहीं ये मुझे पता है मैंने कही सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
9: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर रिन एनडी टीवी भोपाल।
2: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
10: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है इस रिश्ते में कनेक्शन भी है कन्विक्शन भी है इस रिश्ते में इनोवेशन भी है इंस्पिरेशन भी है इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं शेयर्ड विजन भी है हाँ आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
11: Our two countries share the mission of

0: out the star that we were looking for. Of course, Super Smriti, she was the star of the match, and she really set the tone and tenor for the entire team. But talking about ahead in this tournament, who are the key competitors for Team India who can match their grit, their determination and their technique on the field?
1: Well, you see, India, will be clashing against some of the very tough contestants. I would say they will come up against Australia also. They will come up against South Africa. The couple of the matches in the league stage against Netherlands and against Bangladesh look to be easy at the moment. But again, remember, it's a T20 format, and T20 can be anyone's game on the given day. So despite, having an easy group, India could experience some of those difficult matches. Also remember, Birmingham spin had a lot of impact. But as they move north, they'll play in Leeds, they'll play in Manchester, in different conditions across the small island. So expect India to encounter different challenges on course of their World T20 campaign. I must mention here that India are the current 50-over world champions, and they have actually began with that momentum in the same vein of form. Deepti Sharma was the player of the tournament in the 50-over World Cup, and coming into the T20 World Cup in the first game, straight away she created an impact with those 5 wickets. So India has sent out a clear warning to the opponents, saying that they are here, they're here for business, and you will have to keep watching them very, very closely.
0: Rika, just a quick word on the losing side. I saw some comments on social media and some people saying that Pakistan team, compared to their performances in the past, has done well in this match. So, a word from Team Pakistan from you.
1: Well, I really don't think they have done well in this match, except for that couple of overs, maybe 3 or 4 overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Apart from those 3 overs when they looked like they were in control, and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match, not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were before. And also, having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things, and they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
0: All right, Rika, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for separate sitting in the Parliament, and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future, they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
3: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना, ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है, तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर,
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं, शायद ये सही भी नहीं होते हैं, चाप है।
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to vote 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी, जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे, तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए, और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है, ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
9: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही, परंतु ज्यांना यायचं असेल त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
10: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
11: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
0: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
12: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
13: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible, and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the Summit for AI.
12: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है. हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है.
13: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action, the strengths of your country, and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
12: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
13: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
0: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.
14: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.

0: you know, having an easy group India could experience some of those difficult matches. Also remember, Birmingham spin had a lot of impact, but as they move north, maybe they'll play in Leeds, they'll play back in Manchester in different conditions across the small island. So expect India to encounter different challenges on course of their World T20 campaign. I must mention here that India are the current 50-over world champions, and they have actually began with that momentum in the same vein of form. Deepti Sharma was the player of the tournament in the 50-over World Cup, and coming into the T20 World Cup in the first game, straight away she created an impact with those 5 wickets. So India has sent out a clear warning to the opponents, saying that they are here, they're yep. here for business, and you know, you will have to keep watching them very, very closely.
1: Rika, just a quick word on the losing side. I saw some comments on social media and some people saying that Pakistan team, compared to their performances in the past, has done well in this match. So, a word from Team Pakistan from you.
0: Well, I really don't think they have done well in this match, except for that couple of overs, maybe 3 or 4 overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Yeah. Apart from those 3 overs when they looked like they were in control, and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match, not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were before. And you know, also having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things, and they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
1: All right, Rika, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament, and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future, they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
3: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर,
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे, और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है। वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए है, इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं, शायद ये सही भी नहीं होते हैं, चाप है।
1: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to vote 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा? लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
9: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
1: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against 2 nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked 2 nursing staff members for causing death by negligence.
10: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान लगा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्ती मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे

0: क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरेंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरेंज उनने लगा दी। सिरेंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
1: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फार्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
2: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
3: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100 सवा 100 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
4: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
3: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, ऐसे सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
4: Minister, I would like to congratulate you.

0: और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं, शायद ये सही भी नहीं होते हैं, चाप है।
1: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to vote 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
2: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
3: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
4: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
5: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
6: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल
1: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against 2 nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical, used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked 2 nursing staff members for causing death by negligence.
7: एक जो F नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मैरो का सामान लगा है, इसको मत छेड़ो आप।

0: दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही सृष्टि मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरेंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरेंज उनने लगा दी। सिरेंज सिरेंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
1: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
2: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
3: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100 सवा 100 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
4: Our two countries have the shared ambition of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
3: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को

0: All right, some latest news coming in, and this is good news for India's team. India has defeated Pakistan again. Super Smriti leads India to victory. T20 World Cup, and India has beaten Pakistan. Indian women beat Pakistan by 64 runs. The Indian women's team has defeated the rivals. Richa Ghosh, Deepti Sharma, they were the stars of this match. India has dominated Pakistan at the T20 World Cup, and that is the mood lifter that we were all looking for. Then we cut across to Rika Roy. She's joining us live, our sports editor. Rika, how important is this start for India in this tournament, in this World Cup?
1: Well, let me tell you, the star of the show really was Deepti Sharma today. It was Deepti's match who claimed a 5-wicket haul in the opening match of ICC T20 World Cup for India against Pakistan, as India beat Pakistan by 64 runs. It was an absolute dominant spin display by Deepti Sharma and Sri Charani. Deepti, of course, grabbing 5 and Sri Charani grabbing 3 wickets in that innings. Well, I can also tell you that India did not have a great start. In fact, the Pakistani batters started very well, but once Deepti Sharma came on, she stifled the Pakistani batters, getting those crucial wickets in the middle overs and thereby helping India to have a mammoth win of 64 runs. And as a result, they have also improved on their net run rate. They're currently just behind Australia on the league table. And as you mentioned, there was also stellar contribution from Smriti Mandana, who scored 68 runs. But the night really belonged to Deepti Sharma, who became the highest wicket taker for highest wicket taker in T20s when it comes to women's cricket. She now has 166 wickets and sits right on the perch.
0: Rika, this is, as you rightly pointed out, the start that we were looking for. Of course, Super Smriti, she was the star of the match, and she really set the tone and tenor for the entire team. But talking about ahead in this tournament, who are the key competitors for Team India who can match their grit, their determination and their technique on the field?
1: Well, you see, India, will be clashing against some of the very tough contestants. I would say they will come up against Australia also. They will come up against South Africa. The couple of the matches in the league stage against Netherlands and against Bangladesh look to be easy at the moment. But again, remember, it's a T20 format, and T20 can be anyone's game on the given day. So despite, having an easy group, India could experience some of those difficult matches. Also remember, Birmingham spin had a lot of impact, but as they move north, they'll play in Leeds, they'll play back in Manchester, in different conditions across the small island. So expect India to encounter different challenges on course of their World T20 campaign. I must mention here that India are the current 50-over world champions, and they have actually began with that momentum in the same vein of form. Deepti Sharma was the player of the tournament in the 50-over World Cup, and coming into the T20 World Cup in the first game, straight away she created an impact with those 5 wickets. So India has sent out a clear warning to the opponents, saying that they are here, they're here for business, and you will have to keep watching them very, very closely.
0: Rika, just a quick word on the losing side. I saw some comments on social media and some people saying that Pakistan team, compared to their performances in the past, has done well in this match. So a word from Team Pakistan from you.
1: Well, I really don't think they have done well in this match, except for that couple of overs, maybe 3 or 4 overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Yeah. Apart from those 3 overs when they looked like they were in control, and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match. Not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were you know, before. And, you know, also having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things. And they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
0: All right, Rekha, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo two or to three Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी पहले भाग जाएगी घर से बाहर नहीं निकलेगी आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है आप क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
9: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
10: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
11: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
0: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
7: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको सौ सवा सौ स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में contribute कर रहे हैं।
12: Our two countries have the shared ambition of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
7: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
12: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action, or the strength of your country, and

0: All right, some latest news coming in, and this is good news for India's team. India has defeated Pakistan again. Super Smriti leads India to victory. T20 World Cup, and India has beaten Pakistan. Indian women beat Pakistan by 64 runs. The Indian women's team has defeated the rivals. Richa Ghosh, Deepthi Sharma, they were the stars of this match. India has dominated Pakistan at the T20 World Cup, and that is the mood lifter that we were all looking for. Then we cut across to Rika Roy. She's joining us live, our sports editor. Rika, how important is this start for India in this tournament, in this World Cup?
1: Well, let me tell you, the star of the show really was Deepthi Sharma today. It was Deepthi's match who claimed a 5-wicket haul in the opening match of ICC T20 World Cup for India against Pakistan, as India beat Pakistan by 64 runs. It was an absolute dominant spin display by Deepthi Sharma and Sri Charani. Deepthi, of course, grabbing 5 and Sri Charani grabbing 3 wickets in that innings. Well, I can also tell you that India did not have a great start. In fact, the Pakistani batters started very well, but once Deepthi Sharma came on, she stifled the Pakistani batters, getting those crucial wickets in the middle overs and thereby helping India to have a mammoth win of 64 runs. And as a result, they have also improved on their net run rate. They're currently just behind Australia on the league table. And as you mentioned, there was also stellar contribution from Smriti Mandana, who scored 68 runs. But the night really belonged to Deepthi Sharma, who became the highest wicket taker for highest wicket taker in T20s when it comes to women's cricket. She now has 166 wickets and sits right on the perch.
0: Rika, this is, as you rightly pointed out, the start that we were looking for. Of course, Super Smriti, she was the star of the match, and she really set the tone and tenor for the entire team. But talking about ahead in this tournament, who are the key competitors for Team India who can match their grit, their determination and their technique on the field?
1: Well, you see, India, will be clashing against some of the very tough contestants. I would say they will come up against Australia also. They will come up against South Africa. The couple of the matches in the league stage against Netherlands and against Bangladesh look to be easy at the moment. But again, remember, it's a T20 format, and T20 can be anyone's game on the given day. So despite, having an easy group, India could experience some of those difficult matches. Also remember, Birmingham spin had a lot of impact, but as they move north, they'll play in Leeds, they'll play in Manchester, in different conditions across the small island. So expect India to encounter different challenges on course of their World T20 campaign. I must mention here that India are the current 50-over world champions, and they have actually began with that momentum in the same vein of form. Deepthi Sharma was the player of the tournament in the 50-over World Cup, and coming into the T20 World Cup in the first game, straight away she created an impact with those 5 wickets. So India has sent out a clear warning to the opponents, saying that they are here, they're here for business, and you will have to keep watching them very, very closely.
0: Rika, just a quick word on the losing side. I saw some comments on social media and some people saying that Pakistan team, compared to their performances in the past, has done well in this match. So a word from Team Pakistan from you.
1: Well, I really don't think they have done well in this match, except for that couple of overs, maybe 3 or 4 overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Apart from those 3 overs when they looked like they were in control, and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match. Not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were you know, before. And, you know, also having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things. And they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
0: All right, Rekha, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament, and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo two or to three Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं धीरे धीरे हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बची टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी पहले भाग जाएगी घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है आप क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा है उनको, जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
9: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a three-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
10: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
11: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
0: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
7: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको सौ सवा सौ स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में contribute कर रहे हैं।
12: Our two countries have the shared ambition of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
7: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
12: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
7: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
12: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
0: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
13: to NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.

0: All right, some latest news coming in, and this is good news for India's team. India has defeated Pakistan again. Super Smriti leads India to victory. T20 World Cup, and India has beaten Pakistan. Indian women beat Pakistan by 64 runs. The Indian women's team has defeated the rivals. Richa Ghosh, Deepthi Sharma, they were the stars of this match. India has dominated Pakistan at the T20 World Cup, and that is the mood lifter that we were all looking for. Then we cut across to Rika Roy. She's joining us live, our sports editor. Rika, how important is this start for India in this tournament, in this World Cup?
1: Well, let me tell you, the star of the show really was Deepthi Sharma today. It was Deepthi's match who claimed a 5-wicket haul in the opening match of ICC T20 World Cup for India against Pakistan, as India beat Pakistan by 64 runs. It was an absolute dominant spin display by Deepthi Sharma and Sri Charani. Deepthi, of course, grabbing 5 and Sri Charani grabbing 3 wickets in that innings. Well, I can also tell you that India did not have a great start. In fact, the Pakistani batters started very well, but once Deepthi Sharma came on, she stifled the Pakistani batters, getting those crucial wickets in the middle overs and thereby helping India to have a mammoth win of 64 runs. And as a result, they have also improved on their net run rate. They're currently just behind Australia on the league table. And as you mentioned, there was also stellar contribution from Smriti Mandhana, who scored 68 runs. But the night really belonged to Deepthi Sharma, who became the highest wicket taker in T20s when it comes to women's cricket. She now has 166 wickets and sits right on the perch.
0: Rika, this is, as you rightly pointed out, the start that we were looking for. Of course, Super Smriti, she was the star of the match, and she really set the tone and tenor for the entire team. But talking about ahead in this tournament, who are the key competitors for Team India who can match their grit, their determination and their technique on the field?
1: Well, you see, India, will be clashing against some of the very tough contestants. I would say they will come up against Australia also. They will come up against South Africa. The couple of the matches in the league stage against Netherlands and against Bangladesh look to be easy at the moment. But again, remember, it's a T20 format, and T20 can be anyone's game on the given day. So despite, having an easy group, India could experience some of those difficult matches. Also remember, Birmingham spin had a lot of impact, but as they move north, they'll play in Leeds, they'll play back in Manchester, in different conditions across the small island. So expect India to encounter different challenges on course of their World T20 campaign. I must mention here that India are the current 50-over world champions, and they have actually began with that momentum in the same vein of form. Deepthi Sharma was the player of the tournament in the 50-over World Cup, and coming into the T20 World Cup in the first game, straight away she created an impact with those 5 wickets. So India has sent out a clear warning to the opponents, saying that they are here, they're here for business, and you will have to keep watching them very, very closely.
0: Rika, just a quick word on the losing side. I saw some comments on social media and some people saying that Pakistan team, compared to their performances in the past, has done well in this match. So a word from Team Pakistan from you.
1: Well, I really don't think they have done well in this match, except for that couple of overs, maybe 3 or 4 overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Apart from those 3 overs when they looked like they were in control, and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match, not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were Before, and also having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things, and they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
0: All right, Rekha, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament, and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी तू था लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी
4: सिंबल के लिए जाएंगे आप
3: हाँ जरूर
5: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to vote 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
6: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी पहले भाग जाएंगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप देखो
7: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
4: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद में रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा? लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
9: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a three-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical, used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
10: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मैंने मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
11: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए

0: दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर रेन, एनडी टीवी भोपाल।
1: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
2: Duniya mein alag-alag desh ek dusre ke saath vyapar karte hain. अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
3: Our two countries have the shared ambition of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
2: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
3: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action, or the strength of your country, and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
2: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
3: We practice Make in India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together, we built a lot more than this. And this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
1: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.

0: say that they performed well compared to what they were, you know, before. And, you know, also having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things. And they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
1: All right, Rika, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act. It seems rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament, and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी सिंबल के लिए जाएंगे आप हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
1: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo two or to three Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी पहले भाग जाएगी घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर

0: आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, आप क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
1: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं। हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
2: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा है उनको, जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
3: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकता ही नाही। परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
4: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a three-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
5: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
6: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
4: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron,

0: आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
1: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
2: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद में रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
3: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही, परंतु ज्यांना यायचं असेल
4: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical, used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
5: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी, सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत दरी एक्सपायर हो गया।
6: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
4: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in

0: ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मंशा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
1: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
2: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल
3: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical, used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
4: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कहा, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कहा, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
5: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
3: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer.

0: but also a contributor to the world. Listen in.
1: दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग-अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हां, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
2: Our two countries have the shared ambition of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
1: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
2: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
1: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
2: We practice Make in India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
0: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.